0: प्रार्थना भूपाळ्या पहाटेची मंगल गाणी दिवसाची सुरुवात प्रसन्न करते संतांची अभंगवाणी रोजच्या नव्या दिवसाची प्रसन्न भक्तिमय सुरुवात करण्यासाठी अवश्य ऐका वंदन 107.1 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो वाहिनीवर तसंच न्यूज ऑन AIR या ॲपवर दररोज पहाटे 5 वाजता वंदन.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है. एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था.
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जन जन जुड़ गया था. अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया. मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है.
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया.
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं. हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं. हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना.
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा. इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे. इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी. देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है. ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है. पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद

अग्रवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार

0: कई अहम कदम उठा रही है।
1: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
4: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
5: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल गोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center notifies act paving way for reservation for ST community in Goa Assembly. Lok Sabha passes bill to authorize government to permit banks to levy charges on UPI transactions. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
9: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
8: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
4: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
8: Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world so that the skill and craftsmanship of India's artisans receive global recognition. Minister of Textile will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate the 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. We have more from a correspondent.
10: A major highlight of the celebrations will be the presentation of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon to the handloom weavers for their craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. 4 commemorative postage stamps celebrating the country's rich and diverse handloom weaving traditions will be released on the occasion. 2 publications, Earth, Root, Thread, Al-Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025 will also be unveiled during the functions. National Handloom Day is observed every year on August 7 to commemorate the Swadeshi movement. According to the Ministry of Textiles, the day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of the country's handloom weavers since its inception in the year 2015. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Agitating Jharkhand students have formed an 11-member team to hold talks with the state government to resolve the issue. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations has entered a crucial phase in Ranchi. We have more from a correspondent.
2: The protest against the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations entered its 14th day today in Ranchi, with 6 students continuing their hunger strike. Last evening, the aspirants took out a flashlight protest march from Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi. The protesters are demanding cancellation of the 14th JPSC Civil Services preliminary examination and independent probe into the alleged irregularities and comprehensive reforms in the JPSC and JSSC. The issue also echoed in the Jharkhand Assembly, where opposition NDA legislators demanded a CBI probe into the alleged irregularities. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
8: The monsoon remains active across Uttarakhand. The Gangotri and the Yamunotri national highways have been blocked at several locations due to the debris, while water levels in the state's major rivers have risen significantly. Meteorological department has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in 5 hill districts today. We have more from a correspondent.
11: Rainfall over the past 2 days have led to a sharp rise in the water levels of Uttarakhand's major river, with some flowing close to the danger mark. More than 100 rural link roads connecting villages remain closed due to landslides. Meanwhile, the Met Department has issued a yellow alert for heavy rainfall at isolated places in Uttarkashi, Dehradun, Tehri, Rudraprayag and Bageshwar districts today. Chief Secretary Anand Bardhan yesterday reviewed the monsoon situation at the State Emergency Operations Center. He directed officials to prioritize the reopening of blocked roads, ensure adequate machinery is repositioned in landslide-prone areas, and instructed district magistrates to conduct regular field inspections and closely monitor relief and rescue operations. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
8: India Meteorological Department has predicted heavy rainfall across Kerala. We have more from a correspondent.
12: The red alert that was in force overnight in Pathanamthitta, Kottayam and Idukki districts in Kerala has been downgraded to orange alert today. Orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall, is also in force in 5 other districts. The remaining 6 districts in Kerala under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
8: The overall death toll due to floods in Assam this year has risen to 97. According to latest report, more than 1.68 lakh people remain affected across 15 districts of the state. The affected districts include Golaghat, Shivsagar, Udalguri, Kamrup Metro, Nogaon, Kamrup and Dhemaji. We have more from a correspondent.
6: The Assam State Disaster Management Authority said one flood-related death each was reported from Golaghat and Udalguri district yesterday. The flood situation has improved considerably in the worst-affected districts of Sivasagar, Golaghat, Jorhat and Soraideo, with flood waters receding from most areas. As part of the post-flood response, the government has intensified health camps and medical outreach services in the affected areas to prevent the outbreak of waterborne and vector-borne diseases and to ensure access to health care for affected residents. Meanwhile, the Dhansiri River at Numaligar continues to flow above the danger level, although no river in the state is currently flowing above the highest flood level. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
8: U.S. President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system.
13: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments because it's very unfair. This was done for a different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves.
8: In badminton, India's Tanvi Sharma will face her compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of the Korea Masters in Assen today. Tanvi progressed to the quarterfinals after defeating fellow Indian Shriyanshi Valishetty in the pre-quarterfinals, while Rakshita advanced to the quarterfinals after beating Japan's Manami Suizu. Meanwhile, Ashmita Chaliha will take on top seed Hina Akechi of Japan in another women's singles quarterfinal. Ashmita progressed to the last eight with a dominant win over South Korea's Kim Min-ji. In the men's doubles quarterfinals, the Indian duo Prithvi Krishnamurthy Roy and Krishna Prasad Garaga will face Malaysia's Man Wei Chong and So Woo Ik for a place in the semifinals. India will face arch rival Pakistan in the marquee match of the 2026 Women's Asia Cup at the Dubai International Cricket Stadium on September 5th. The Asian Cricket Council, ACC, yesterday announced the schedule for the Women's T20 Asia Cup 2026 set to be held in Dubai from August 28 with Thailand facing Hong Kong. The final will be played on September 13th. This will be the sixth edition of the Women's Asia Cup to be played in the T20 format. The West Bengal government is set to officially participate in the center's Har Ghar Tiranga campaign for the first time. Chief Minister Subhendu Adhikari yesterday announced a series of programs to mark Independence Day, including the distribution of 70 lakh national flags across the state. He said the state government is joining the center's initiative with the ideals of nation first and patriotism at its core. The Chief Minister said the distribution of national flags began on the 5th of August. General public have been urged to actively participate in the campaign. The Chief Minister informed necessary guidelines have already been sent to all the district subdivisions, blocks, municipal corporations and municipalities across the state in this regard. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
14: Thank you, Abhishek. RSS Chief Mohan Bhagwat's take on Gen Z is prominently noticed by the dailies. The Indian Express quotes RSS Chief as saying, Gen Z grievances real, protest way of dialogue. Lok Sabha passes bill that clears way for UPI payment fees, headlines the Statesman. The Asian Age in editorial piece, Government Opposition Must Allow Parliament to Function, writes that the continued disruption of parliamentary proceedings that has translated into passage of bills with no debate in the monsoon session presents a no-win situation not only for the opposition and the government, but more importantly for the country as a whole. Prime Minister Modi, Netanyahu review India-Israel strategic ties, discuss West Asia developments, reports the Statesman. Alternative fuel passenger vehicles fast catching up with petrol ones, states the Times of India. And finally, in football news, the Pioneer informs that Gianni Infantino gets support at crisis meeting to remain FIFA president. And with that, it's back to you, Abhishek.
8: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre notifies Act paving way for reservation for ST community in Goa Assembly. Lok Sabha passes bill to authorise government to permit banks to levy charges on UPI transactions. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, केम छो, सस्री अकाल, आणी मुंबई कसकाय झकास ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। गुड गुड गुड मॉर्निंग, शुक्रवार की ये सुहानी सुबह, और शुक्रवार को मस्त मुंबई में रहता है सिनेमा का मैटिनी शो। कौन सी है आज की फिल्म जल्द ही आपको बताऊंगा और कुछ फिल्मी बातें भी होगी, लेकिन फिलहाल लेकर आया हूं आपके मॉर्निंग का एंटरटेनमेंट मस्त मुंबई। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 8:52। आप सुन रहे हैं स्टेशन ऑफ नेशन एफएम रेनबो और मैं हूं आरजे शैलेंद्र। मस्त मुंबई को आगे बढ़ाते हैं कुछ मस्त वाले नगमों के साथ और कुछ मस्त वाले म्यूजिक के साथ। स्टे ट्यून, दिल से दिल तक।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज है, समीर के लिखे बोल जतिन ललित का एक बेहतरीन कॉम्पोजिशन, फिल्म है संघर्ष।

0: डिपॉजिट स्कीम सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05% सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं घर में दो दो फ्रिज हैं फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर
4: हर घर सूर्य घर
5: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
6: यस म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी वेलकम बैक मस्त मुंबई में आज के मैटिनी शो में हमारी फिल्म है 1990 की अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म अग्निपथ अग्निपथ यानी आग की लपटों से घिरा रास्ता इन आग के लपटों से घिरे हुए रास्ते से किसे गुजरना पड़ता है अर्थात इस फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन यानी विजय को और वो इसकी वजह बनती है विजय के पिता की हत्या मांडवा गांव के स्कूल में एक आदर्शवादी शिक्षक विजय के पिता अंडरवर्ल्ड डॉन कांचा चीना और उसके गैंगस्टर साथियों के हेरोइन की तस्करी का अड्डा बनाने के प्लान का कड़ा विरोध करते हैं और उनका ये विरोध ही वजह बनती है विजय के पिता की हत्या की अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान के साथ रेप की कोशिश का बदला छोटे विजय को लेकर जाता है मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अंधेरे रास्ते पर यानी यही अंडरवर्ल्ड का रास्ता बन जाता है विजय के लिए अग्निपथ का रास्ता और अग्निपथ की बात अगर हमारी आज की फिल्म अगर अग्निपथ है और अग्निपथ की बात हो रही है तो उस कविता को कैसे भूल सकते हैं जिसने सभी को आज तक हमेशा प्रेरित किया है कविता वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छाह भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ इस कहानी में अग्निपथ की कहानी में क्या मोड़ आता है बताऊंगा लेकिन अग्निपथ फिल्म का ही भगवान गणेश का ये गीत बने रहिए एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक

सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, साथ में अनुपमा देशपांडे, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत, फिल्म आप जानते ही है अग्निपथ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 9:15 का समय हो चुका है। आज शैलेंद्र के साथ आप है मस्त मुंबई में। कार्यक्रम के शुरू होते ही हमारे साथ कुछ लिसनर जुड़े हैं, उनका जिक्र जरूर करता हूँ हमेशा। और आज भी जो लिसनर कार्यक्रम में जुड़े हैं और अपने संदेश हम तक भेज रहे हैं, उनमें देखिए प्रणव शिंदे हैं। कविता जो मैंने थोड़ी देर पहले पठन की थी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने अग्निपथ फिल्म का जो है वो अग्निपथ फिल्म का पोस्टर हमारे साथ शेयर किया है और कह रहे हैं कि बेहद ही खूबसूरत मूवी है। उसके बाद हितेंद्र दास है, उन्होंने संदेश भेजा है। हितेंद्र के बाद दत्तात्रेय अड़ात जो है वो उन्होंने बेलापुर से हमारे पास संदेश भेजा है। और भी कई सारे संदेश है। फिरोज भाई है हमारे साथ, भारती अनि दुर्गेश, यस नगानपुरे, यस ये जो है संदेश हम तक पहुंचा है। और भी कई सारे संदेश, प्रमोद चिंचोलकर जिन्होंने संदेश भेजा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग के संदेश और कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यस उमरी अकोला से उन्होंने संदेश भेजा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आपका प्यार और आपके संदेश हम तक भेजने के लिए। मस्त मुंबई कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ा हूं और इस कार्यक्रम में आपसे बातें हो रही है फिल्म अग्निपथ की। 1990 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और अग्निपथ की मुख्य कहानी है, अग्निपथ द्वंद्व है, मांडवा में अपना काला गोरख धंधा चलाने वाले माफिया कांचा चीना और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमा चुके विजय दीनानाथ चौहान की। इन दोनों के बीच का ये द्वंद्व है अग्निपथ में। काली दुनिया में विजय का बढ़ता कद जो है वो अब उसके ऊपर जो लोग हैं, उसके मालिक जो है वो उन्हें भी खटकने लगता है और उन्हीं के द्वारा, विजय के ऊपर जो भी लोग हैं उन्हीं के द्वारा उस पर हमला किया जाता है, हमारे फिल्म के नायक विजय पर। इस हमले में विजय बुरी तरह जो है वो जख्मी हो जाता है और इस जख्मी हालत में उसकी जान बचाता है एक तमिल नारियल बेचने वाला कृष्णन अय्यर MA। इस किरदार को निभाया है मिथुन चक्रवर्ती ने। कृष्णन अय्यर MA का किरदार मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री इस फिल्म में, जो उसे यानी विजय को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसकी जान भी बचाता है, साथ ही साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इसी हॉस्पिटल में विजय की मुलाकात नर्स मेरी से होती है। मेरी ने विजय की हॉस्पिटल में देखभाल की है, सेवा की है और विजय भावनात्मक रूप से मेरी से जुड़ने लगता है, क्योंकि विजय की मां और उसकी बहन जो है वो विजय के क्रिमिनल आदतों के सख्त नाराज है और उसकी बहन के साथ जो है उसकी मां विजय से अलग रहती है। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन फिर से उस प्रेरित करने वाले कविता के कुछ अंश और मिथुनदा का जिक्र किया है तो उन्हीं पे फिल्माया गया ये एंटरटेनिंग सॉन्ग्स भी आपके लिए लेकर आया हूं। मस्त मुंबई में बने रहिए। कविता का कुछ अंश, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी।

तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये संगीत। आई एम कृष्णन अय्यर एमए।

करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगे उठा का तुमको डिस्क नारियल दिखाएगी। अच्छा बात कर रहा है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज इस गीत में है और मदन मोहन का ये एक स्वर्गीय मदन मोहन साहब का ये कंपोजिशन फिल्म है वीर जारा। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 9:35। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, मैं हूँ

0: आर जी शैलेंद्र मस्त मुंबई में आज के मैटिनी शो में अग्निपथ कहानी जारी है, जहां आप कांचा चीना के साथ उसके पुराने गांव में जाने की डील करने के बाद विजय कई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे कांचा चीना का क्रिमिनल काम कम हो जाए और उस गांव का लीगल मालिकाना हक जो है वो विजय या फिर सरकार को मिल जाए। जब कांचा चीना को पता चलता है कि विजय की नजर मांडवा पे है, तो दोनों के बीच द्वंद्व चरम पर पहुंचता है। इस आग में घी का काम करता है जब कांचा चीना को पता चलता है कि विजय उसी मास्टर दीनानाथ चौहान का बेटा है जिसे उसने कुछ साल पहले धोखे से मारा भी था। दोनों के बीच एक हिंसक और खूनी लड़ाई होती है जब चीना जो है वो गांव पर कांचा चीना जो है वो गांव पर ऊपर से बम गिराता है और पूरे गांव को तबाह कर देता है। इससे पहले विजय उसके जो है वो इरादों को नाकामयाब कर उसे नीचे ले आ जाता है और उसे मारने से पहले ही उस बम की आग में कांचा चीना को जो है वो धकेल देता है। हालांकि उस भड़की हुई आग में फेंक देने के बावजूद जो है वो विजय को कांचा चीना द्वारा कई सारी गोलियों का शिकार होना पड़ता है और विजय घायल हो चुका है। अब घायल विजय जो है वो क्या बच पाता है, क्या उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसका दोस्त कृष्णन अय्यर एमी जो है उसका भी क्या होता है, जानेंगे अग्निपथ के इस खूबसूरत गीत के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपके जो संदेश मुझ तक पहुंचे हैं वो भी जरूर उनका जिक्र भी होगा। फिल्म जो लोगों के दिलों के हमेशा करीब रही है, उसी फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए। स्टे ट्यून एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: मेरे हीरो,
2: ये क्या करती?
1: मेरे जानो,
2: मुझे डर लगती है।
1: मेरे बाला,
2: तेरा भाई हमको मारती।
1: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: Oh my God, you are in love.
2: हाँ, you are in love.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ये जो हल्की हल्की खुमारियाँ मोहब्बतों की तैयारियाँ, मोहब्बत जो है वो राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में आप तक पहुंच रही थी, इरशाद कामिल के लिखे बोल सन ऑफ सरदार का ये गीत। और ठीक उसी तरह आपकी मोहब्बत जो है वो संदेशों के माध्यम से हम तक पहुंची है। किस किस के संदेश हमारे साथ जुड़े हुए लिसनर्स के संदेश हम तक पहुंचे हैं। विजेंद्र घाटोल है अकोला से, राकेश माथुर पुणे से, श्रेयस राउत, मिलेश राउत वाडवन से, शुभदा मैडम पुणे से, सुरेश वैष्णव है रजनीकांत पाटिल वाडवन से, महेश भाटकर सेंटाक्रूज से, दीपा पालकर मैडम है शुभलक्ष्मी मास्तेकर, कई सारे लोगों के संदेश है। थैंक यू और धन्यवाद आपके इन संदेशों के।

लिए। साथ ही साथ आपके संदेशों के साथ साथ कहानी को, अग्निपथ की इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। आज की कहानी अग्निपथ को दरअसल अब अंजाम देते हैं। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी माँ की गोद में घायल विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने किए गए कामों को उचित ठहराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो सच में अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ यानी आग के रास्ते पर चला था और जोर देकर कहता है उसे ये नाराजगी है कि वो दरअसल इन सब काले रास्तों पर चलते हुए भी एक क्रिमिनल नहीं है, मुजरिम नहीं है। उसकी माँ और कृष्णन अय्यर, उसका दोस्त, उसकी बहन शिक्षा और मैरी उसके इस मौत पर रोती है और आखिर में उसे मरने से पहले ये कहती है कि उसने जो भी किया या फिर उसने जो भी रास्ता अपनाया था अपनों के लिए, अपने परिवार के भले के लिए किया था और वो क्रिमिनल नहीं है। ये बात सुनकर विजय अंत में शांति की मौत मर जाता है। एक क्राइम फाइटर के रूप में अमिताभ बच्चन साहब ने इस किरदार को निभाया था और उस दौर में इसकी बहुत प्रशंसा हो गई। अमिताभ बच्चन को उनके काम के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ ये उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार था। इसके साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी हट्टंगड़ी जिन्होंने अमिताभ की माँ का किरदार निभाया था, उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। उस साल की ये चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के करीब है और इस फिल्म को लोग आज भी जो है वो देखना पसंद करते हैं। उसका रीमेक भी बनाया गया है धर्मा प्रोडक्शन द्वारा ही, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि ये फिल्म का विषय और किरदार ही ऐसे है। उम्मीद करता हूँ आज की फिल्म और ये कहानी आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ इस फिल्म के गीत भी आपको पसंद आए होंगे। चलिए थोड़ी देर में 10 बजने वाले हैं, समाचार का समय होगा। अग्निपथ के इस गीत के साथ मुलाकात होगी फिर से समाचार के बाद। स्टे ट्यून्ड एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र। लेकिन जाने से पहले वही प्रेरणादायी कविता के कुछ अंश। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, जल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10:40 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दिन देश अपनी समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मनाता है। देश के बुनकरों और कारागिरों के कौशल, रचनात्मकता और समर्पण को नमन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीढ़ियों के इन शिल्पकारों से भारत की परंपराओं को संरक्षित और समृद्ध किया गया है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और समाचार में आगे, महाराष्ट्र में दहीहंडी उत्सव को ध्यान में

रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1,60,000 से अधिक गोविंदाओं के लिए एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा की है। दुर्घटना में मौत या विकलांग होने की स्थिति में 10,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान किया गया है। और समाचार के अंत में खेल समाचार। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने कल महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 का कार्यक्रम घोषित किया। ये 28 अगस्त से दुबई में आयोजित किया जाएगा। पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के बीच होगा और फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। FM रेनबो पर अगला कार्यक्रम है नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम रेनबो पर नए कार्यक्रम की शुरुआत समाचारों के बाद, और मैं फिर से आपसे जुड़ा हूँ आरजे शैलेंद्र। नमस्ते भारत कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और जिसमें आज का सेगमेंट रहता है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। दरअसल आज के मैटिनी शो में अग्निपथ फिल्म के साथ साथ जिक्र हुआ मांडवा गांव का। मुंबई से कहीं दूर रहने वाले, लाखों तो नहीं लेकिन 100, 150, 500, 600 किलोमीटर दूर रहने वाले शायद लोगों को, या फिर कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मांडवा कोई काल्पनिक गांव होगा जिसे अग्निपथ में दिखाया गया है, या फिर पुरानी अग्निपथ के साथ साथ नई अग्निपथ में और कुली इस फिल्म में भी इस गांव का जिक्र हुआ है। लेकिन मांडवा कोई काल्पनिक गांव नहीं है, ये हकीकत है। आज हम मांडवा गांव के बारे में ही बात करेंगे। कहाँ है ये मांडवा गांव, जानते हैं इस गांव के बारे में और इसकी संस्कृति के बारे में, लेकिन पहले कुछ खूबसूरत गीत। आरजे शैलेंद्र के साथ बने रहिए नमस्ते भारत में, दिल से दिल तक।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। ये उन सभी के लिए जो किसी को पसंद करते हैं और उनके दिल के पल पल उनके दिल के पास कोई खास रहता है। 10:19 का समय है और नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत। मैं आरजे शैलेंद्र आपके साथ जुड़ा हूँ और हम जो है वो मुंबई से जुड़े पास के गांव मांडवा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मुंबई से देखा जाए तो वैसे मांडवा जुड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। अब जिन लोगों को मुंबई या महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक मांडवा जो है वो राजस्थान में भी है एक, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के पास जो मांडवा गांव है, उस मांडवा गांव के बारे में। भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित ये मांडवा गांव समंदर के तटियों पर एक खूबसूरत सा गांव है। यहाँ पर मुंबई से वीकेंड में घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। जैसे लोग लोनावला घूमने जाते हैं या फिर लोनावला खंडावाला जाने का प्लान करते हैं, ठीक उसी तरह मांडवा जाने का भी बहुत से लोग वीकेंड पर प्लान करते हैं। और यहाँ के बीचेस और यहाँ का जो निसर्ग है, नैसर्गिक वातावरण है, उसका आनंद लेते हैं। मुंबई से यहाँ सीधे फेरी भी जाती है जिसे रोरो के नाम से जाना जाता है। और आपको ये फेरी जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया से मिल जाएगी, या फिर बहुत सा धक्का जो है वो वहाँ से भी आपको मांडवा के लिए फेरी मिल सकती है। आप जब अलीबाग पहुँचते हैं तो अलीबाग से ये लगभग 19 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

एक घंटे का जो है सफ़र रहता है मुंबई से इस फेरी का, एक घंटे या सवा घंटे का समय लगता है। और आखिर क्यों जो है वो मुंबई कर या फिर पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं, जानते हैं कुछ खूबसूरत नगमों के बाद। बने रहिए मेरे यानी आरजी शैलेंद्र के साथ, जल्द ही लौट कर आऊँगा इन इन म्यूजिकल गीतों के बाद। FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 10:31। आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। इस सेगमेंट इस कार्यक्रम में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा ये सेगमेंट मांडवा गांव के बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ। मांडवा गांव देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है। वहाँ के सुंदर स्वच्छ और आबो हवा और समंदर

समंदर के किनारों की वजह से लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। ऐतिहासिक रूप से जो है वो मांडवा एक शांत मछली पकड़ने वाले और कृषि प्रधान कोली समुदाय का गांव हमेशा से रहा है, जहां आज भी काफी लोगों की उपजीविका मछली व्यवसाय पर निर्भर करती है। और मछली व्यवसाय के साथ साथ अब धीरे धीरे जो शहरीकरण या फिर मुंबई से कनेक्टिविटी मांडवा गांव की बड़ी है, तो वहाँ भी जो है वो शहर की चीज़ें और एजुकेशन के साथ साथ अलग अलग व्यापार और उद्योग, ये जो है वो उनका प्रचार और प्रसार हो रहा है। बट आज भी वो जो गांव की मासूमियत और वहाँ का भोलापन और साथ ही साथ मछली व्यवसाय से जुड़े रहना आज भी वहाँ के लोग पसंद करते हैं। आगे जानते हैं मांडवा के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। कहीं मत जाइएगा, मस्त वाला म्यूजिक लेकर आया हूँ FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: स्मॉल डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
3: आकाशवाणी म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल आरजे शैलेंद्र के साथ आप सुन रहे हैं गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। मांडवा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में अगर जानना है तो आपको बता दूं कि यह क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज और मराठा साम्राज्य के प्रभाव वाले रायगढ़ यानी पूर्ववर्ती कोलाबा जिले का हिस्सा है। इसके आसपास ऐतिहासिक कोलाबा किला और चोल जैसे पुर्तगाली मराठा कालीन अवशेष आज भी मौजूद है और यहाँ जो है जैसे कि मैंने जिक्र किया किले कोलबा किला भी यहाँ मौजूद है। इसी वजह से मांडवा एक नैसर्गिक खूबसूरत स्थान होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थान भी है। इस ऐतिहासिक स्थान की जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और गुरी तेरा गांव बड़ा प्यारा ये भाग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एफएम रेनबो पर एंटरटेनमेंट तो है ही, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के साथ इन्फोटेनमेंट भी है, तो कहीं मत जाइएगा। कार्यक्रम जो है वो अभी समापन की ओर है और साथ ही साथ हमारे साथ जो लिसनर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, निशिकांत जोशी पनवेल से, रविंद्र केंद्रेकर दादर से, अजय साखरे इंदौर से, सुनील पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम आठवले बाबा जो है वो दादर से, चेतन कुमार

गया बिहार से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी लोगों का शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम को समापन करेंगे, लेकिन पहले इस प्यारे से गीत के बाद।

बोलना माही, बोलना 10:51 का समय मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय हो चुका है। मैं आरजे शैलेंद्र आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और वो बहुत बहुत खुश रहे। आप सभी लोग अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताए जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। और आप जानते हैं आज शुक्रवार है, शुक्रवार शुरू होते ही वीकेंड की जो है वो भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो किसी का सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो छुट्टी वाला मूड जो है ये फ्राइडे से ही धीरे धीरे जो है वो कैलकुलेटर की तरह या फिर रिमोट की तरह हमारे उसमें हमारे दिमाग में इसकी टिक टिक जो है वो शुरू हो जाती है। वीकेंड को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ फेस्टिवल सीज़न जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो उसका भी जो है वो मज़ा आप धीरे धीरे लेने वाले हैं। मैं आरजे शैलेंद्र आपसे जल्द ही मिलने आऊँगा, जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग एफएम रेनबो एंड लव मी टू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: स्वागत है 107.1 MHz आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। सुबह के 11 बज चुके हैं। ये वक्त होता है FM रेनबो मुख्य समाचार का। तो पेश है 11 बजे तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवाओं प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। समाचार में आगे, महाराष्ट्र में अच्छी मानसून बारिश के कारण जलाशयों में जल भंडारण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जल संसाधन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 3,029 प्रमुख जलाशय अब तक 70% से अधिक भर चुके हैं। अनेक क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के कारण जलाशयों का जलस्तर बढ़ा है। समाचार में आगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। कांगो में इबोला से अब तक 1,850 लोगों की मृत्यु हो गई है। समाचार में आगे, खेल। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश की रक्षिता रामराज से भिड़ेंगी। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी भारत की ही श्रियांशी वेलिशेट्टी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये थे अब तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। अगला कार्यक्रम होगा ब्रेक फ्री, बने रहिए FM रेनबो के साथ। पेश है ये गाना आप तक, राहत फतेह अली खान की आवाज़।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। सुबह के 11:11 हो रहे हैं और ये समय होता है ब्रेक फ्री म्यूजिक का और कार्यक्रम भी ब्रेक फ्री म्यूजिक है। तो आज हम ब्रेक फ्री म्यूजिक में जो बात करेंगे, हिंदी साहित्य के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसकी रोशनी पीढ़ियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती है। भीष्म शानी उन्हीं नक्षत्रों में से एक हैं। वे केवल उपन्यासकार या कहानीकार नहीं थे, वे एक संवेदनशील इंसान, प्रतिबद्ध लेखक, शानदार अभिनेता और मानवीय मूल्यों के प्रहरी थे। उनकी लेखनी ने विभाजन की त्रास दी, सामाजिक विषमता और मानवीय रिश्तों की जटिलता को जिस सच्चाई और सरलता से लिखा, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भीष्म शाहनी जी की। उनका आज जन्मदिन है, आज ही के दिन वो इस दुनिया में अवतरित हुए थे। तो पेश है आज का ये कार्यक्रम, उन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा। अगली पेशकश आप तक पहुंचा रहा हूं ये गाना।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम ब्रेक फ्री म्यूजिक चल रहा है और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पंजाब में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार एक संपन्न आर्य समाजी परिवार था। उनके बड़े भाई प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक बलराज सहनी जी थे। घर का माहौल साहित्यिक तो था ही, साथ ही साथ देशभक्ति से भी भरा था। भीष्म जी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की और उनका शोध का विषय था अमेरिकन लेखक जॉन स्टीनबेक। पढ़ाई के बाद वो अमृतसर के कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर बने। 1947 में देश विभाजन के समय रावलपिंडी से विस्थापित होकर वो भारत आ गए। यह अनुभव उनके जीवन और लेखन की सबसे बड़ी प्रेरणा का कारण बना। विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए और उन्होंने यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़कर काम किया। बने रहिए कार्यक्रम ब्रेक फ्री म्यूजिक में। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। अगली पेशकश आप तक ये ट्रैक।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। सुबह के 11:35 हो रहे हैं, कार्यक्रम ब्रेक फ्री म्यूजिक चल रहा है और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की। उनकी बात कर रहे थे तो उन्होंने रूसी साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। लगभग 10 सालों तक वे मॉस्को में विदेशी भाषा का प्रकाशन गृह में हिंदी अनुवादक के रूप में काम करते रहे। यहीं उन्होंने मैक्सिम गोर्की के प्रसिद्ध उपन्यास माँ का हिंदी अनुवाद किया, जो आज भी बहुत पढ़ा जाता है। भीष्म साहनी जी के अगर हम अभिनय जीवन की बात करें तो भीष्म साहनी जी एक अच्छे अभिनेता थे। उन्होंने गोविंद निलाने की टीवी धारावाहिक तमस में नाथू की भूमिका निभाई। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में उन्होंने महात्मा गांधी के बड़े भाई लक्ष्मीदास का रोल किया। जुनून, मम्मो, किस्सा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया, जो कि आज भी यादगार है। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। अगली पेशकश पहुंचा रहा हूं श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाज आप तक।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

45 मिनट हो रहे हैं, कार्यक्रम ब्रेक फ्री म्यूजिक चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। दरअसल हम बात कर रहे थे भीष्म शाहने जी की, आज ही के दिन उनका जन्मदिन था। लेकिन कहते हैं जब एक महान विभूति का जन्म होता है तो वो अपने पीछे जो कृतियां छोड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम गाहे बकाहे हम उनके बारे में बात तो करते ही रहते हैं। 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में भीष्म शाहने जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचार रचनाएं आज भी जीवित हैं। भीष्म शाहनी जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य और अनुवाद सभी विधाओं में लिखा। उनकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की हिंदी थी। वे जटिल शब्दों से बचते थे ताकि हर आम आदमी उनकी बात को समझ सके। भीष्म शाहनी जी ने कुल 5 उपन्यास लिखे और हर उपन्यास एक अलग सामाजिक मुद्दे को उठाता है। तमस, मयादास की माड़ी, बसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफेर और एक कहानी संग्रह भी हैं जिसमें कि उन्होंने 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिखीं। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ऐसे ही महान विभूतियों के बारे में हम रेडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे। अगली पेशकश आप तक पहुंचा रहा हूं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ फिल्म गजनी से, बैक टू बैक 2 गाने। इसके बाद हम मिलेंगे ठीक 12 बजे कार्यक्रम म्यूजिक कैफे से, पहले न्यूज हेडलाइंस को लेकर के फिर म्यूजिक कैफे होगा। तो बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। छोड़े जा रहा हूँ आपका ये बैक टू बैक 2 गाने, कर रहा है आपका इंतजार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: जी हाँ, दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये समय होता है एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार का। तो पेश है 12 बजे तक के मुख्य समाचार। छात्रों के आंदोलन तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों का कामकाज 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। समाचार में आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन मुंबई के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन आज उनके हाथों होगा। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आज 926 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था यहां जम्मू के आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह काफिला देर रात भगवती नगर यात्री निवास से 42 गाड़ियों से रवाना हुआ, जिनमें 21 बसें शामिल थीं। समाचार में आगे, खेल। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिहा ने आज आसन में आयोजित कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अश्मिता ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की हीना अकेची को 20-22, 21-15 और 21-19 से हराया। ये थे एफएम रेनबो इंडिया 12 बजे तक के मुख्य समाचार। अगली पेशकश म्यूजिक कैफे, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

जी हाँ, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। दोपहर के 12:08 हो रहे हैं और म्यूजिक कैफे में चूंकि दोस्त हैं तो आप तो म्यूजिक तो होगा ही और

दोस्त से बातें जब होती हैं तो यकीन मानिए जो कैफे का मज़ा है और दुगुना हो जाता है। हम शांति से बैठ के बातें करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं और साथ में म्यूज़िक जब होता है तो आपका कहीं ना कहीं दिल भी लगा ही होता है। दरअसल दोस्तों ऐसा है कि आज के ज़माने में हम कहीं ना कहीं रील्स में, सोशल मीडिया पर या अन्य चीज़ों पर व्यस्त होते जा रहे हैं। हमारा टाइम अटेंशन कम होता जा रहा है, हम किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। जल्द से जल्द चाहते हैं कि चीज़ें झटक करके आगे बढ़ जाए और हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है वो मिल ही जाती है और हम आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, आपका ध्यान फोकस एक जगह पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक आप कोई भी बेहतर चीज़ अपने आप में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस से जो है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो संगीत होता है हमारे एकाग्रित, हमें एक भी करता है और हमें एकाग्रता को भी बढ़ाता है। तो बने रहिए म्यूज़िक कैफे के साथ, बातें होंगी तमाम और साथ में होंगे म्यूज़िक का जो आप लोगों का जो एक प्रेम है वो भी बेहतरीन संगीत आप तक पहुँचेगा। अगली पेशकश आप तक उदित नारायण की आवाज़, अकेली ना बाजार जाया करो।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

जी हाँ, पलके झुकी और नजरें उठने लगी तो हौले से उनका सलाम आया। 12:26:31 हो रहे हैं, कार्यक्रम ब्रेक म्यूजिक कैफे चल रहा है यहाँ पर। और अभी हमने आपको दोनों ही गाना सुनाया, फिल्म वीर से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ और साजिद साहब का संगीत था और गुलजार साहब के लिखे बोल थे। तो कहते हैं दोस्त, म्यूजिक कैफे में जो हमने आपको गाने सुनाए, संगीत का साथ अगर रहता है तो समय बेहतरीन कटता है, या कहिए समय बेहतरीन रूप से आगे बढ़ता है। कटना तो थोड़ा सा एक ये होता है कि हम काट रहे हैं, लेकिन संगीत कटने का, संगीत तो आपके साथ होता है तो आप बड़े अच्छे से अपने भाव के साथ, इमोशंस के साथ उससे आगे बढ़ते रहते हैं। दरअसल 12:27 हो रहे हैं और कुछ ही वक्त की इस म्यूज़िक कैफे में कुछ एक संगीत की गुंजाइश रह गई। इसके बाद अगला कार्यक्रम हम स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम होगा NCERT के द्वारा उमंग, जो हम स्टूडियो से ही पेश करेंगे। तो अब बने रहिए FM रेनबो के साथ। और दोस्त, म्यूज़िक कैफे में आज की जो बात हम कर रहे थे युवाओं के दिलचस्पी के बारे में, और जिस तरह से उसका टाइम में टेंशन कम हो रहा है, चाहे हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय दे रहे हैं तो टाइम टेंशन कम होने की वजह से हम अपने आप को जल्दी किसी भी चीज़ में एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं। और इसके वजह से ये होता है कि जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो एक निरंतर सा ध्यान रहता है वो टूटता चला जाता है। लेकिन अगर हम संगीत के माध्यम से, किताबों और कहानियों के माध्यम से अपने समय को एक बेहतरीन दिशा में लगाने का प्रयास करें, तो कहते हैं कि पढ़ने से हमारे शब्दकोश भी बेहतर होते हैं और भावनाओं, इमोशंस की कई सारी कहानियाँ, किरदारों से हम जुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो एक स्क्रीन टाइम जो होता है, टाइम स्पेन और हमारी चीज़ों पर जो उनका प्रभाव पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है और हम एक अच्छे तरीके से और एक कहिए तो सुकून वाले अंदाज में हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। 12:28 हो रहे हैं, कार्यक्रम म्यूज़िक कैफे चल रहा है। अगली पेशकश आप तक

रहेगी, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। एनसीईआरटी द्वारा कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा हमारे स्टूडियो से ही। उसके बाद के कार्यक्रम के लिए आप बने रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, जुड़े रहें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है,

0: लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच माउली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी

0: चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना। अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
1: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ, बताइए ना नाना जी।
3: बेटी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
1: अच्छा,
3: पुरानी या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
2: मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
4: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा।
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
4: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
4: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है

0: पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना

0: तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में

और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। दोपहर के 1:05 हो रहे हैं, समय हो चला है कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। और हिट एंड हॉट में जो हम आज के गाने चलाएंगे वो आपकी ही फरमाइश होगी। और हिंट के लिए आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, सुरेश वाडेकर जी का जन्मदिन है और हमारी महाराष्ट्रीय अस्मिता को और आगे ले जाने वाले कलाकार रहे हैं, तो उनकी भी कुछ चुनिंदा फरमाइशें आप हमें भेज सकते हैं, ज़रूर हम शामिल करेंगे हिट एंड हॉट में। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। पहली पेशकश हरिहरन और स्वर्णता की आवाज़ आप तक पेश कर रहे हैं, चूंकि ये गाना हमने प्लेलिस्ट में लाया था, तो बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। इसके बाद सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ आप तक पहुंचेगी।

जी हाँ, कार्यक्रम हिट एंड हॉट सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। दोपहर के 1:20 हो रहे हैं और हिट एंड हॉट में आज हम आपको गाने सुना रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं हम सुरेश वाडेकर जी की ही, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और मराठी अस्मिता या कहिए तो महाराष्ट्र की संस्कृति पे गर्व करने का भी उन्होंने अवसर दिया है अपनी इस कला में, गीत संगीत में, गायकी में अपना योगदान देकर। सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ तो यूं है कि कहिए कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि समय के साथ साथ वो जैसे समय गुजरता जाता है वैसे उनकी आवाज़ मीठी होती चली जाती है, कर्णप्रिय होती चली जाती है। तो फिलहाल प्रेम रोग से भी आपने ये गाना सुना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल। तो अगली पेशकश हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं सुरेश वाडेकर जी की ही आवाज़, फिल्म चांदनी से है, इसकी फरमाइश हमें की है यवतमाल से। रेगुलर लिसनर्स हमारे सुरेश कुमार पुटट जवार जी, उनकी तरफ से ये फरमाइश की गई है। प्रणव सिंधे जी भी हमें मैसेज कर रहे हैं और वो सुरेश वाडेकर साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। मान खुर्द मुंबई से बिल्कुल हम आपकी शुभकामनाएं आकाशवाणी के माध्यम से हम ऑन एयर कर रहे हैं। दीपा पालकर जी हमें लिख रही हैं कि सुबह सुरेश वाडेकर जी की जी का गाना सुनाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है ए जिंदगी गले लगा दे। बिल्कुल जितना मौका मिलता है हम जरूर आपके प्लेलिस्ट में, अपने प्लेलिस्ट में आपके सॉन्ग को शामिल करेंगे। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। यशवंत आड मुटे साहब भी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, फिल्म सिंदूर, पतझड़, सावन, बसंत बहार, पांचवा मौसम प्यार का पांचवा मौसम प्यार का तो बिल्कुल है और प्यार का मौसम तो हर हमेशा बना रहता है। सर यशवंत आड मुटे जी बने रहिए, जरूर प्यार से हम आपकी इस फरमाइश को जरूर शामिल करेंगे। हिट एंड हॉट चल रहा है, अगली पेशकश ईमानदारी से फिल्म ईमानदार का गाना आप तक चला रहे हैं और इस दिल में क्या रखा है आपका ही तो फरमाइश है और आपका ही नाम छुपा रखा है। बन रही है एफएम रेनबो के साथ।

जहां 1:28 हो रहे हैं और ये आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रवि शंकर। कार्यक्रम हिट एंड हॉट चल रहा है और हिट एंड हॉट में हम सुरेश वाडेकर साहब के जो गाए हुए गीत हैं उन्हीं को हम ज़्यादातर प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपकी फरमाइशों को भी शामिल कर रहे हैं जो आपने सुरेश वाडेकर जी के जन्मदिन की शुभेच्छा भेजी है और साथ में आपने उनके गाने को भी फरमाइश की है। लेकिन अब 1:30 होने ही वाले हैं। 1:30 पर समाचार होता है, राष्ट्रीय मराठी समाचार का वक्त होता है जिसे हम आकाशवाणी के ही केंद्र से रिले करेंगे। तो बने रहिए समाचार, और समाचार के बाद हम फिर से

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो का ये आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट। 1:41 हो रहे हैं। सुरेश वाडेकर जी के जो गाए हुए गीत हैं हम आज आपको सुना रहे हैं, क्योंकि आज हम उनका जन्मदिन भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप साथ ही साथ आपकी फरमाइशों को भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। अगली पेशकश भेज रहा हूँ आप तक आशा भोसले और सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ फिल्म परिंदा से।

107.1 MHz आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रवि शंकर। 1:51 हो रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। अब कुछ ही गाने की, यानी कही तो आखिरी गाने की ही गुंजाइश रह गई है। तो चूंकि हम सुरेश वाडेकर साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा गाए गीतों को हम आज शामिल भी कर रहे थे अपने इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ आपके भी फरमाइश को हम यहाँ पर शामिल कर रहे थे, तो कुछ एक गाने की और गुंजाइश बच गई है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। अगली पेशकश हमने लिया है फिल्म सदमा से। पंकज महूट जी हैं, अभिजीत गवनकर जी, शिवनाथ जाखेरे जी, राकेश माथुर जी, इन सभी का हम तक मैसेज भी आया है और साथ में इन्होंने फरमाइश भी की। प्रणव सिंधे जी ये लगातार मैसेज भी भेज रहे हैं और फरमाइशें भी कर रहे हैं। तो जितना भी हो पाया उन सभी गानों को तो हमने ज़रूर शामिल किया। अगली पेशकश फिल्म सदमा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुरेश वाडेकर साहब की ही आवाज़। उसके बाद के कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो के साथ जुड़े रहें। रही बात मेरी, तो मैं रविशंकर फिर से किसी न किसी मोड़ पर आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो के किसी न किसी कार्यक्रम में आपके साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक आपको छोड़े जा रहा हूँ इस नगमे के साथ, और ये आकांक्षा रखता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है, जो हमने हिट एंड हॉट हो, म्यूज़िक कैफे हो या ब्रेक फ्री हो, सब के सब आपको अच्छे लगे होंगे, और गाने जो आज के हमने प्ले किए वो भी आपको अच्छा ही लगा होगा। इसी पॉजिटिव आकांक्षा के साथ मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश ये गाना आप तक।

0: में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की, संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत

0: संकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: में कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1। और शुरू करते हैं लव इज जिंदगी का आज का बेहद खास सफर। आज हम सुनेंगे भारत के कुछ सबसे यादगार और सदाबहार पॉप गीत, जिन्होंने अपनी अनोखी धुनों, दिल को छू लेने वाले बोल और अपनी अलग अंदाज में संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई और हमारे यादों में हमेशा के लिए बस गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बजेगा भारत के पॉप संगीत का गोल्डन कलेक्शन।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं कि वो अभी चाय पी रहे हैं, चाय की फ़ोटो उन्होंने भेजी, थैंक यू। और मुझे कह रहे हैं कि आप भी चाय पीजिए जी, कभी मिलते हैं पियेंगे साथ में आपके। और प्रणव जी भी गुड इवनिंग कह रहे हैं, विजेंद्र जी भी कह रहे हैं गुड इवनिंग, उनको काफ़ी अच्छा लगा। और पंकज माहौर जी हैं हमारे साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई, अभी बहुत सारे गाने अभी बजने बाकी हैं। तो दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है, जिनकी धुन, उनके बोल और उनका एहसास हर बार दिल को छू जाता है। लव जिंदगी में आप सुनिए ऐसे ही दो बेहद खूबसूरत पॉप गीत, जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने दौर में थे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। उम्मीद है इन खूबसूरत पॉप गीतों के साथ आपका सफर भी उतना ही खास बन रहा होगा जितना कि हमारा। अब सुनते हैं लगातार दो यादगार पॉप गीत। पहला गीत बताएगा कि दिल पर किसी का ख्याल किस तरह छा जाता है, और दूसरा उसी दिल को मस्ती से झूमने पर मजबूर कर देगा।

दोस्तों, मैं हूं आरजे रॉबिन और आप मुझे सुन रहे हैं लव योर जिंदगी में। कुछ गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, महसूस किए जाते हैं और कुछ अपनी रफ्तार से हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक गीत जिसने हिंदुस्तानी पॉप संगीत को नई पहचान दी, शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस। बिना रुके बहता हुआ यह गीत आज भी उतना ही दिलकश लगता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लगातार 3 मिनट तक सांस रोककर कोई गाना गाना है तो क्या आप गा पाएंगे? देखिए, मेरा भी नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत मुश्किल है ये एक सांस के अंदर गाना गाना। तो चलिए सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस।

तो दोस्तों उम्मीद है पॉप गीतों का यह सफर आपके दिल को छू गया होगा। यही है पॉप संगीत का जादू। हर धुन में एक याद, हर बोल में एक मुस्कान। और भी अभी गाने बचे हैं थोड़े से, क्योंकि हमारे पास कुछ वक्त और है। और भी कुछ लोग हमें भेज रहे हैं मैसेज जिन्हें गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दिलेश जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर सच लवली सॉन्ग्स। बिल्कुल, हमारा तो काम ही यही है कि आपके लिए अच्छे अच्छे गाने बजाएं। प्रणव जी को भी गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। डूबा डूबा जो गाना भी जस्ट मैंने बजाया उनको काफ़ी अच्छा लगा। देन विजेंद्र घटोल जी तो फोटो भेज रहे हैं और वो खेत में बैठे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और अजय साखरे जी को भी अच्छे लगे गाने। पंकज मोहोड़ को भी गाने काफ़ी अच्छे लगे। चलिए फिर अब टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ गाने जो हैं बचे हुए हैं वो चलाते हैं एंड एंजॉय।

दोस्तों, इसी गाने के साथ हमारा लव जिंदगी का प्रोग्राम समाप्त करने का टाइम हो गया है और कुछ ही देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम जिसका नाम है अंदाज़ा बयां। सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 म्यूजिकली योर्स।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां FM Rainbow 107.1 पर. दोस्तों, कुछ अल्फाज सिर्फ कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं. कुछ नगमे सिर्फ सुने नहीं जाते, रूह तक उतर जाते हैं. यही वो महफिल है जहां हिंदी की अपनापन भरी मिठास और उर्दू की नफासत मिलकर हर एहसास को एक नई जुबान देती है. तो आइए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं जहां हर गीत एक दास्तान, हर शेर एक जज्बात और हर लम्हा दिल के और भी करीब.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दोस्तों, कभी कभी खामोशियां भी बड़ी फंसी जुबान में बातें करती हैं, बस उन्हें सुनने के लिए शोर नहीं सुकून चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा शेर अर्ज है, हर लफ्ज मुकम्मल हो ये लाजमी तो नहीं, कभी खामोशी भी दिल का पता बता जाती है। इन्हीं खामोशियों, एहसासों और दिल की गुफ्तगू को सुरों का सहारा देने का वक्त है। आइए सुनते हैं अगले कुछ खूबसूरत नगमे।

दोस्तों, अंदाजे बयां सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजे रॉबिन के साथ। दोस्तों, जिंदगी कभी इम्तिहान लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह बन जाती है, और जब हम उसे हर हाल में अपनाना सीख लेते हैं तो दिल में मोहब्बत भी कुछ और गहरी हो जाती है। शायद इसलिए एक तरफ दिल कहता है ऐ जिंदगी गले लगा ले, और दूसरी तरफ उसी दिल से एक खामोश इकरार निकलता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।

दोस्तों, कुछ अल्फाज दिल तक तभी पहुंचते हैं जब उन्हें सुकून और मोहब्बत के साथ कहा जाए। मोहब्बत की अपनी एक रवानी होती है, ना कोई शोर ना कोई जल्दबाजी। अगला गीत भी उसी नर्म एहसास का खूबसूरत तरन्नुम है। सुनिए राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में बोलना हल्के हल्के।

दोस्तों, अब समय आ रहा है अंदाजे बयां को समाप्त करने का, और ठीक 7 बजे आप समाचार सुनेंगे मराठी में, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे आपके चहेते कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। और आज की जो हमारी थीम है, आपको ऐसे गाने की रिक्वेस्ट भेजनी है जिसमें प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव या प्रेम का जिक्र हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव या प्रेम, तो फटाफट सोचिए और भेजिए आपकी रिक्वेस्ट। हम आपसे मिलेंगे समाचार के बाद हम तुम में।

तो दोस्तों, इन दो गानों की फरमाइश आई थी आरव और अमृतेश जी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो केवल प्यार के ऊपर बेस्ड जो गाने हैं उस पर भेज रहे हैं, जबकि आपको और भी बहुत जो मैंने बोला है इश्क, मोहब्बत, लव, लव के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, तो वो भी आप भेजिए ताकि वैरायटी रहे, अलग अलग गाने हम बजा पाएँ, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट प्ले करनी है। तो जो अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, इसकी रिक्वेस्ट है पंकज महोड़ और गाना है इश्क बिना।

दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मिर्ची नहीं लगी होगी क्योंकि गाने तो बड़े मीठे मीठे बज रहे हैं। तो चलिए अब अगला गाना प्ले करते हैं। इश्क हुआ कैसे हुआ, दत्ता केदार विट्ठल जी दिग्दर्शन और कविता जी के फरमाइश।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।

दोस्तों, अब वक्त हो रहा है मेरा जाने का और उम्मीद करते हैं आपको हम तुम का ये थीम प्यार इश्क मोहब्बत वाला काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं जो जिनके गाने प्ले नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। सुनील गायकवाड़ जी, सुशील, मुकेश कश्यप, दत्ता राय, कल्पना राजू, आरती, शंकराचार्य, रजनीकांत पाटिल, बालकरण वर्मा, हीरामणि वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी, वैदेही और राजन और दिग्दर्शन और कविता, बाबा दादर। तो चलिए फिर, अभी कुछ टाइम बाकी है तो कुछ गाने और प्ले कर सकते हैं हम लोग। और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

0: पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा

0: देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस

0: छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
4: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And an Asian youth and junior weightlifting champion.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, अल्फाजों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत बहुत एक ये कहें कि अल्फाजों की बहुत बड़ी जगह है तो गलत नहीं होगा, और अल्फाजों का बहुत बड़ा महत्व है ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्फाज ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं या अलग करते हैं, या फिर एक दूसरे को दुश्मन या दोस्त बना देते हैं। अब देखिए ना, अपने अल्फाजों को अगर आप प्यार भरी चाशनी में डुबोकर किसी के सामने पेश करते हैं तो वो शख्स आपका हो जाता है, और अगर वही शब्द अपनी ईगो को लेकर या फिर अकड़ दिखाकर वही शब्द आप अकड़ कर बोलते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। शब्द वही है, बोलने का तरीका, जी हाँ, बस वो थोड़ा सा अलग है। जो इंसान दिल की भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कला जानता है तो समझ लेना चाहिए कि वो शायर के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी है क्योंकि शायर होना और शायरी के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि भावनाओं को या किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाना ये भी अलग बात है, और शब्दों को चाशनी रूपी समंदर में डुबोकर किसी के सामने पेश करना ये अपनी ही एक अलग अदा है, अपनी ही एक अलग कला भी है। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हैं तो वो भी अच्छी बात है वो अच्छी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैं हूं ना समझाने के लिए। अगर कुछ समझ ना आए तो समझ सकते हैं, लेकिन एक शब्द, एक लाइन, एक गजल, एक गीत प्यार का, वो ऐसी भाषा है जो सबको समझ आती है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से।

कि दिल ही नहीं करता कि इनको स्टॉप किया जाए, या फिर ये इस तरीके के गीत गजलें कभी ख़त्म हो। बस दिल तो यही चाहता है आराम से, सुकून से ऐसे ही गीत गजलें सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। लेकिन ऐसे कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों? हाँ, कई लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी होती है, ऑफिस जाना होता है। तो इतना इतना सुकून भी किस बात का कि आप बस पूरी रात ऐसे ही खोए रहें? तो खोने की जरूरत नहीं है, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। मेरे पास एक मैसेज आया है जर्मनी से, नमस्कार, प्लीज़ प्ले। उन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश कर दी है और ये लिखा है सौरभ ने। तो सौरभ, कोशिश कर सकती हूँ कि ये गज़ल सुनवाई जाए। वैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन किंतु परंतु कोशिश की जा सकती है। राजकुमार के संताने अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, आप कैसी हो? सुस्वागतम जी सेकंड प्रोग्राम में एफएम रेनबो पर जी, कार्यक्रम गीत संगीत गज़ल में और आपकी बातों में भी मधुरता आएगी जी। अब हम मज़े से कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी बातचीत में सवाल और जवाब भी सुन रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आगे आपने कुछ छोड़ दिया है, लेकिन जो आप बाद में जी जी जी करते हैं ना, तो ये पढ़कर सुनकर अच्छा लगता है जी। और कह रहे हैं कि कार्यक्रम और बातचीत में आपकी चार चांद लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं, ये लिखा है शुभ संध्या निखिल। तो शुभ संध्या, शुभ रात्रि मैडम जी, राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा से। तो देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी वीडियो या कोई फ़ोटो भेजते हैं, हमें ये तो पता चलता है कि कोई फ़ोटो या वीडियो भेजिए, लेकिन हम उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ना ही ये पता लगा सकते हैं कि आपने हमें भेजा क्या है। इसलिए इतनी जहमत मत उठाइए कि कोई भी वीडियो या फ़ोटो भेजें आप, तो वो हम डाउनलोड या उसे खोल नहीं सकते हैं। तो मैसेज के जरिए बात कीजिए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, अपनी नरम मुलायम उंगलियों को थोड़ा तो कष्ट दीजिए। देखिए ये भी एक्सरसाइज ही है। गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम। जयंत पटना से लिखते हैं, तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये कह रही थी कि तू साथ है तो हर गम आसान हो जाता है, तू साथ है तो हर गम आसान हो जाता है, तेरे बिन अब सब वीरान हो जाता है। तू तो लगता है जन्नत मेरी, तुझ बिन सावन भी पतझड़ समान हो जाता है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और एक और खूबसूरत गजल आप सबकी नजर।

वेलकम बैक दोस्तों। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे जो कह रहे हैं कि हमारा जो मैसेज है वो आपने शामिल नहीं किया अपने प्रोग्राम में। तो दोस्त ऐसी बात तो नहीं है, मैंने आपका जो मैसेज है मुझे अच्छी तरह से याद है, अपने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम बैक। जयंत लिखते हैं पटना से। एक और मैसेज शर्मा जी का, राजेश शर्मा जी लिखते हैं इतने दिनों तक गायब हो जाती हो, क्यों हो जाते हो? तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि इतने दिन के लिए गायब मैं इसलिए हो जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आप सबको मिस करती हूँ, आप लोग भी मुझे मिस करते हैं या नहीं, आपको मेरी याद आती है या नहीं। एक और मैसेज ले लेते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगता है, कभी मेरा भी मैसेज पढ़ लिया कीजिए। सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से। तो भाई लगता है सौरभ नाम के बहुत सारे लिसनर्स हो गए हमारे पास, है ना। चलिए अब आपकी नाराज़गी दूर हो ही गई होगी क्योंकि आपका मैसेज मैं ले चुकी हूँ। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा से, उन्हें भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। तो क्या कहूँ, यही कहूँगी कि जब भी आपका दिल करे तो मनपसंद गीत संगीत सुन लेना चाहिए। और अगर आप को किसी की याद सता रही है, आपको कोई या फिर परेशान कर रहा है या फिर आपकी तबीयत खराब है, सबसे सबसे इजी तरीका है, जी हाँ, म्यूजिक। चाहे वो गीत हो, गजल हो, बस शब्द ऐसे होने चाहिए कि आप

दिल पर खास दस्तक दें, और जब दस्तक दें तो आप ये भूल जाएं कि आप कितनी देर से म्यूजिक सुन रहे हैं, कितना वक्त गुजर गया और आप इस वक्त कहाँ हैं।

0: सच में अगर शब्दों की गहराइयों तक पहुंचा जाए और सोच समझकर उन शब्दों का तालमेल बिठाया जाए तो समझ में आता है कि एक एक शब्द में कितनी गहराई है। अब देखिए ना, कहा गया धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर निकलो। कितने प्यारे शब्द हैं, है ना? और हकीकत बात है कि हम जिंदगी की हर पढ़ाई किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही सीख सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली जिंदगी में ना उतरें, और जब प्रैक्टिकली जिंदगी के सफर में आप अकेले उतरते हैं, तब आपको समझ में आता है, पता चलता है कि आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही जुड़े हुए थे। असली जिंदगी, असली सफर तो अब तय करना है। और ये सफर जब आप तय करने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी कुछ अधूरापन सा लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका सफर, जी हाँ, आपकी मेहनत के अनुसार आसान हो रहा है। क्योंकि हर चीज मुकम्मल नहीं की जा सकती। इसी तरह से जिंदगी में आप किताबों से सीखिए, प्रैक्टिकली जिंदगी के सफर में कितना भी देखिए, सुनिए और अपनी जिंदगी को उन सब चीजों के साथ मिलाकर चलिए, कभी भी चीजें पूरी नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, और शायद कुछ चीजें अधूरी होना अच्छी बात होती है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, और पूरे भारत में। जी हाँ, आप हमें सुन सकते हैं कभी भी, कहीं भी, और भारत के बाहर भी आप हमें सुन सकते हैं ऐप के जरिए, कभी भी, कहीं भी। तो चलिए फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे एफएम रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं आप सभी से। जी हां, जिस तरह से आप अपने दिल की बात अपने दिल में नहीं रखते हैं, आप जानते हैं कि मैं भी आप ही की दोस्त हूं, तो इसलिए अपने दिल की बात अपने दिल में नहीं रखती हूं। यूं तो अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने, इश्क प्यार मोहब्बत में हारे हुए हैं हम, इसलिए दिल पत्थर का और जज्बात कठोर हो चुके हैं। और अगले ही पल जब खामोशियों के मेले में वो लोग दिल पर दस्तक देते, गीत गजलें सुनते हैं, तो आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगती है। इसलिए किसी ने सच कहा है कि संगीत एक बहुत बहुत बड़ा जादू है, जो चीजें दवाई नहीं कर सकती वो काम कभी कभी संगीत पूरा कर देता है। और जब आप दिल पर देते दस्तक गीत या गजलें सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आंसू सिर्फ और सिर्फ दुख के होते हैं, कभी कभी खुशियों से भी आंसू छलक जाते हैं। और इनको कुछ नाम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्फाजों के ज़रिए बयां नहीं की जा सकती, उनको सिर्फ सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बस।

जी हाँ दोस्तों, कहा था ना मैंने कि अल्फाजों को आप किस तरह से दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं या कह रहे हैं अपनी बात को, उसका बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए ना, कभी कभी दिल की बात हम दूसरे को कहने जाते हैं, अपने ही अंदाज में कह देते हैं लेकिन इस बात को ध्यान में कभी रखते ही नहीं कि हमारा अंदाज कैसा है। क्या ये हमारा अंदाज या अल्फाज जो हम यूज कर रहे हैं वो दूसरे इंसान को पसंद आएंगे या नहीं? जी हाँ, कभी कभी बातों को बोलने से पहले तोलना भी पड़ता है। और जब हम दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा होगा या उसको क्या अच्छा लगता होगा या किस तरह से उसको हमारी बात समझ में आएगी, जब जब हम ये सब चीज़ें समझ

जाएंगे, जान लेंगे, तब तब शायद आपकी दोस्ती, आपका प्यार बहुत बहुत बहुत आसान हो जाएगा आपको मिलना। और देखिए ना, अगर आप किसी के लिए कोई जज्बात रखते हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि आपके दिल में क्या है, तभी तभी तो बात बनेगी, है ना। तो चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगता है, मेरा भी मैसेज पढ़ लिया कीजिए, सौरभ महाराष्ट्र से लिखते हैं। देखिए ये तो बहुत गलत बात है भाई। देखिए मैं आपका मैसेज पढ़ चुकी हूँ, ऐसे ही एक और मेरे पास मैसेज आया था, आप क्या चाहते हैं कि आपकी दोस्त आप सबसे नाराज हो जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो फिर लगता है जब मैं आपके मैसेजेस लेती हूँ आप कहीं पानी पीने चले जाते हैं या फिर कुछ खाना खाने के लिए। लेकिन किंतु परंतु आप एक बात समझ लीजिए कि मैं कभी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सभी के मैसेजेस लिए जाएं, सभी के मैसेजेस ऑन एयर किए जाएं। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप जब भी मैसेज करें तो कोशिश किया करिए कि कम शब्दों में आप मैसेज करें। अब कब आएंगी आप? भाई ये तो आपके लिए एक सरप्राइज होना चाहिए। और राजेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, बहुत ये बात तो सही है, मैंने यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी को थोड़ा सा गैप दिया जाए ताकि पता चले कि जितना मैं आप सबको मिस करती हूँ आप करते हैं या नहीं करते हैं। आपके मैसेजेस के जरिए सब जाहिर हो रहा है, सब जाहिर हो रहा है कि आप लोग भी मुझे बहुत मिस करते हैं। फिलहाल फिलहाल फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कह लीजिए या गजल, बहुत ही प्यारा सा जहन में आ रहा है, तो चलिए आप सबको सुनवा देती हूँ, क्योंकि ये आवाज़ भी वही आवाज़ है जिसको अभी आप सुन रहे थे।

हो, कुछ चीज़ें होती हैं कि अधूरी रह ही जाती हैं, है ना। कोई बात नहीं, एक मैसेज है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है मैडम, महेश जानू मंडवा झुंझुनू राजस्थान से लिखते हैं। और एक और मेरे पास मैसेज है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो सॉरी, मैं आपका मैसेज नहीं लूँगी, लेकिन फिर मुलाकात ज़रूर होगी किसी ना किसी मोड़ पर, इसी वाले प्रोग्राम में या इससे पहले वाले प्रोग्राम में। जब भी मुलाकात होगी आप सबके लिए सरप्राइज होगा। और आप सबकी शिकायत रहती है कि हमेशा ये वाली गजल अधूरी रह जाती है, तो चलिए आज इसको पूरा कर लेते हैं, ये गजल आप सबके लिए। फिलहाल अपनी दोस्त रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए।

बहुत ही खूबसूरत शो के बाद अब हम आ चुके हैं कैलेंडर के अगले दिन, और इस वक्त घड़ी की सुइयां हमें 00:00 दिखा रही हैं और इस तरह इंगित ही कर रही हैं कि अब वक्त हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बहते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश भी दिया गया। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। समय हो चुका है 12:02 और कुछ ही पलों में हाजिर होंगे हम कार्यक्रम जीरो और शो लेकर इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर मेरे यानी रजत के साथ, बस कुछ ही देर में।

0: प्रदेश के इस खूबसूरत गाने के साथ आगाज हम कर चुके हैं जीरो और शो का आज की तारीख में, आज 8 अगस्त सन 2026। और इस खूबसूरत बेला में, खूबसूरत बेला मैंने इसलिए कहा कि अगर चांद कहीं निकले हैं तो उन्हें झांकने का मौका नहीं दिया गया, बादलों ने ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसून की जो परछाया है वो देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में, और झमाझम भी हो रहा है, कहीं छमछम भी है तो कहीं गरज बरस के साथ भी है। तो इस खूबसूरत बेला में, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत समय से एक इसी तरह की बारिश का इंतज़ार था, उमस की तपेश और कहीं गर्मी ने, बीच बीच में लू तो खैर बहुत दिन से नहीं देखी हमने, लेकिन शुरू में जब लू थी 7-8-10 दिन गर्मी की शुरुआत के दिनों में, उन दिनों लोग मान के चल रहे थे कि क्या ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन मानसून ने बता दिया कि भाई हम भी हैं और बड़े दमखम के साथ हैं। आज मतलब कल पूरा दिन बारिश हुई और अभी संभावना है कि आने वाले और 24 से 48 घंटे इस झमाझम के हो सकते हैं और होने जा रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम एनसीआर और तमाम उत्तर भारत, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम भारत में भी इसकी छटा देखने को मिल रही है और काफ़ी जगहों पर तो यह है, कमोबेश पूरा देश इस वक्त मानसून की गोद में है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि हम इस बारिश का लुत्फ उठाएं और कहीं से भी जान या माल किसी प्रकार की क्षति ना हो, यह प्रार्थना करनी चाहिए। तो मानसून जिस सुखद एहसास के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, जाना जाता है, वैसे ही यादें छोड़कर जाए और फिलहाल का जो है चौमासा है ये सुखद ही रहे सभी के लिए। हम बढ़ चले हैं अब इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीरो और शो, मेरे रजत के साथ आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का तहे दिल स्वागत इस प्रोग्राम में।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार

0: बार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकता है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया। भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह की 12वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो में आपका स्वागत है। करते हैं कुछ मोहब्बत भरे गीतों की बात इन द प्रोग्राम सुहानी रात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने के निर्देश दिए। भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: जिसका आपको इंतज़ार था वो तो घड़ी आ ही चुकी है, 2:09 के करीब हो चुके हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम भुलाए ना बनेगा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर की हमारी ऐप पर भी, जिसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं हमारे हर प्रोग्राम के साथ और इस शो के साथ भी देश और दुनिया के अलग अलग कोनों और हिस्सों से। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं भुलाए ना बने कार्यक्रम में, और आप जुड़े हमारे साथ और जुड़े रहिए, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। और इंतज़ार मैंने इसलिए कहा क्योंकि गानों की छटाएं जो है एक कार्यक्रम से दूसरे शो तक आते आते थोड़ा रद्दोबदल वाली स्थिति में होती है, लेकिन उसमें हमें इंतज़ार रहता है कि जो यहाँ नहीं हुआ शायद वहाँ हो जाए। तो आपकी पसंद के गाने, इससे पिछले शो में भी बड़ा खूबसूरत शो था, मैंने खुद सुना, और इसमें भी आपको कुछ अलग देखने को सुनने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत

0: कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, रात्रि के 3 बजे हैं। आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन।

जारी है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईआईटी जम्मू के में जम्मू कश्मीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई आधारित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सुबह के 4 बज चुके हैं और समय हो चला है इस वक्त आपको देश और विदेश की जानकारी देने का, न्यूज़ हेडलाइंस के जरिए, समाचारों की सुर्खियों के जरिए। तो लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यात्रा पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कल देर शाम पहली औपचारिक वार्ता हुई। मिजोरम में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल एम जेड पी ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सोमवार को आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रस्तावित है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े 114 प्रकाशनों और प्रचार सामग्री पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आपके अपने आकाशवाणी रेनबो चैनल पर। सुबह के 4:02 हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे दैनिक कार्यक्रम सारेगामा में मेरे यानी रजत के साथ।

0: तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी

सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना